0: साले उधर हमबर्गर ला हमबर्गर वो साले माला गाई
1: विलाव दें लंका विलाविंग रात्रि आटाई
2: live fm.lk